मेरा दिल कह रहा है, मैं तेरे सुर्ख लड़कते होठों की लाली देखती, अपने लबों की शबनमी शरारत देखती। हाँ मेरा दिल कह रहा है, तेरी पाजेब की झंकार में, तेरे बाहों की चंदन हार में, अपनी बेचैनियों की हालत लिखती। मेरा दिल कह रहा है, तेरे उलझे गए सुसवर इन आंखों के आईने में, मेरा दुल्हन स्वरूप में, इस महकती जमीन की